0: Mad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UA वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

सरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। YFM 105.4।

देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

मसाला दुबई की मस्ती। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। YFM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

जहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्दुल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

0: ये है यूएई का देसी साउंडट्रैक वाइबीएफएम 105.4।
1: हुक जो बोले
2: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
1: एनर्जी बोले वाइबीएफएम 105.4।

0: शर्जील।
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, फ्रॉम 6 AM टू 11 AM,
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।
1: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन, नया शोर।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: बोले
1: झुमका किरारे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
1: This music station.

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब FM 105.4 पर

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

0: Shook it on Mad Mornings on YFM 105.4, 7:31 on the clock. Here you are from the movie Race 3, Deep Money Neha Basin. Wednesday ka din, the 6th of May 2026. Hi sahab, Wednesday aa gaya. Matlab na idhar ka na udhar ka, but aisa din jo zaruri hai, zaruri din pe zaruri baatein karenge. UAE first mein janenge ki kya chal raha hai.
1: Basanti, in headlines pe mat nachna. Pehle suno UAE ka sabse bada khabar ka tamasha. ये है UAE First.
0: Well, UAE First में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट हर मिनट फ्रेश न्यूज ओनली मैं आपको देने वाला हूं, बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है हर जगह, स्पेशली दुबई में. दुबई में ग्लोबल विलेज जो है क्लोज होने वाला है. द सीजन 30 इज गोइंग बी क्लोजिंग ऑन द 10th ऑफ मे. सिर्फ 5 दिन और रह गए. 5 दिन कहाँ से भाई, हाँ 5 दिन रह गए, क्योंकि आज जो है 6 तारीख है, तो फिर 4 दिन और रह गए. 4 दिन में आप ग्लोबल विलेज अगर नहीं गए इस साल, तो फिर अगले साल जाएगा और क्या हो जाएगा यार. ये एक बार नहीं है कि ये पहली बार जा रहा है, ये जाएगा फिर वापस आना है, वो ना लौट के तुझको आना है, हाँ खड़ा तेरा दीवाना है, ये वो वाला ही सीन होने वाला है. सीज़न 31 का शेड्यूल जो है अभी तक पता नहीं है, बट सीज़न 30 was the most eventful season. There was so much which happened at Global Rages. It was like most amazing time to be there. And agar hum log baat kare Dubai mein, e-scooters, cycle ke jo fines hai na, ye to bhai shuru hone wale, first mein se shuru ho gaya. Ek naya unit aaya hai jo personal mobility monitoring unit hai. Yahan pe cycling tracks ho gaye, main roads ho gaye, soft mobility zones ho gaye, har jagah jo hai ye watch rakhe hue. Unsafe riding pe fines padenge. Matlab ye hai ki agar aap Dubai mein e-scooter le rahe ho na, हाँ तो हेलमेट, रोड रूल्स, सही लेन, ये सब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. यूएई वाइज हर जगह जो है फ्लाइट्स फुली नॉर्मल है. देर आर अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लाइट्स, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. तो आपको जो है अगर अपने फ्लाइट निकलना है ना, तो फिर सोच समझ के जाएगा. एंड देन वन थिंग विच इज हैपनिंग एवरीवेयर इन यूएई इज द डेविल वेयर्स प्राडा 2. भाई साहब, हर लोग जो है ना, हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है. मेरिल स्ट्रीप, एनी हैथवे, एमिली ब्लंट, everyone, like ये पूरा cast and crew जो है ना, हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है just to watch what is actually happening. It is because of nostalgia, but क्या करें, at the end of the day जो original होता है वही होता है original, and उसके बाद जो आता है वो होता है अलग. हाँ, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, याद आया ना, at the end of the day cult classic तो वो भी बना था. And there is so much things which are happening in UAE. So what are you most excited about? Yeah, aisa koi story jo mujhe jo hai na, shayad mere hatte nahi chada hoga. Aisa kuch hai to bataiye on 0508791054. And also, if you have that one particular memory about Global Village jo aap aaj tak nahi bhool paaye hain, do let me know 0508791054 pe, because Global Village and yaar Global Village ke liye ek gana hai jo mere dimag mein baitha hua hai.
2: गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूएई का अपना दिल. वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई.
0: सो द वन सॉन्ग गोइंग आउट टू एवरीवन हु लव्स ग्लोबल विलेज, आबिदा परवीन और नसीबो लाल, तू झूम फ्रॉम कोक स्टूडियो. 7:34 on the clock. Main hoon Sharjeel. Subah UAE wali, Mandas Desi wali, only on Mad Mornings. Have a very, very good morning. Volume badhaiye, shishe giraiye, chai ki pehli chuski, parathe ke pehle bite. Let's start Wednesday with Tujhoom.

0: इतना झूम झूम के ट्रैफिक बताऊं किधर है? हाँ चलो वो तो बताना ही पड़ेगा ना।
1: Hey Jock, where is the traffic?
2: Traffic updates on Vibe FM 105.4.
0: वेल यूजुअल ट्रैफिक मिलने वाला आपको ऑन अगर मोहम्मद बिन जायद से आ रहे तो जाहिया से लेके ऑल द वे टू वर्का आपको मिलेगा ट्रैफिक एंड अ स्मॉल लिटिल एक्सीडेंट नियर राशिदिया एज वेल। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिलिकॉन ओएसिस के पास थोड़ा सा ट्रैफिक बिल्ड अप, उसके बाद पूरा रास्ता जो है आपको मिलेगा क्लियर बिना कोई ट्रैफिक के ऑल द वे टू, हाँ चलिए दुबई साउथ तक मिल जाएगा, उधर से थोड़ा ट्रैफिक शुरू हो जाएगा बट हाँ मोस्ट ऑफ द रास्ता इट इज डन। उसके बाद एयरपोर्ट टनल से आएंगे तो वहाँ पर यूजुअल ट्रैफिक मिलेगा बट डू नॉट मर्ज ऑन टू E44 बिकॉज वहाँ से आपको मर्ज करते हुए यू फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक नियर डाउनटाउन बिजनेस बे, तो वहाँ से अगर केयरफुली जाएंगे तो अच्छा है। बट अगर आप आ रहे हैं फ्रॉम टूवर्ड्स अल शारजा के हाँ इतिहाद स्ट्रीट से तो अल खान से लेके ऑल द वे टू गरहूद आपको मिलेगा ट्रैफिक, तो वहाँ से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इफ़ यू गोइंग टूवर्ड्स द इन्फिनिटी ब्रिज वाटर फ्रंट एरिया की तरफ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, सो यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डिलेज ओवर देयर। करामा मनखूल बर्दबाई की तरफ अगर है सतवा की तरफ है तो भाई साहब उधर तो ट्रैफिक भरपूर है। अगर कोई और ट्रैफिक अपडेट है तो बताइए 0508791054।
1: ट्रैफिक का सीन क्लियर, म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन वाइब एफएम 105.4।
0: मस्ती और मटर गश्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए, हाँ तीसरी चीज क्या है वो आप मुझे बताइए 0508791054 पे। मोहित चौहान की आवाज में फ्रॉम द मूवी तमाशा 7:41 ऑन द क्लॉक। गुड मॉर्निंग यूएई।

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

Janiman, from the movie show. Sugar and Mad Mornings on FM 105.4, number one desi music station in UAE. मैं हूँ शर्जील. Tuesday का सवाल. सही है, मैं हमेशा जो है ना कुछ ना कुछ सवाल सोचते रहता हूँ. UAE में क्या आप रोज घर का खाना खाते हो या डिलीवरी ऑर्डर करके खाते हो? Well, this is not something which you will have to think about twice because this is actually a thing which keeps happening. ये simple सवाल लगता है but इसका जवाब जो है ना वो आपका पूरा lifestyle explain कर सकता है. सोचिए, ऑप्शन वन, आप घर का खाना बनाते हो, घर पे खाना खाते हो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जाके सामान वामान लेके आना है, ऑयल घर के ब्रांड का, डेडिकेटेड कुक जो है घर पे आप आराम से करते रहते हो अपना. ऑप्शन बी आता है डिलीवरी का, जहाँ पे आप जितने भी फूड डिलीवरी ऐप्स है उसको यूज़ करते हो एंड वो जो है आपके सच्चे साथी, सच्चे कंपेनियन है बिकॉज घर जो है ना सिर्फ चलता है उन लोग की बदौलत. ये भी हो ही जाता है ना. एंड ऑप्शन नंबर थ्री, जहाँ पे आप हाइब्रिड सिस्टम चलाते हो क्योंकि लंच जो है घर का होता है, डिनर जो है बाहर का होता है. ये सोफिस्टिकेटेड अप्रोच जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाता है. तो आप जो है कैटेगरी ए, बी या सी किस में लाइक करते हैं, इस पे जो है ना मतलब बहुत सोचना पड़ता है कि यार कैसे होने वाला है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खाना जब गर्म गर्म आता है ना भाई, अभी से सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे इसको डील करना चाहिए सुबह सुबह. वेल, खाना जब घर पे फ्रेश आता है, गर्म गर्म आता है, एकदम ताज़ा होता है, तो फिर भाई साहब जो भूख लगती है वो ऐसे ही मुंह में पानी ला देती है. तो अगर घर का खाना आपको पसंद है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, डू लेट मी नो 0508791054 पे. या तो आप हाइब्रिड सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर खाना घर पे बना है कि बाहर से आ रहा है, इट इज़ अबाउट हाउ गुड यू फील बिकॉज यू सपोज टू फील गुड ना. मैं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनली ऑन वाईफाई 105.4. आई फील गुड फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी, आपके लिए विशाल ददलानी एंड शिल्पा राव ऑन द वोकल्स. 8:02 ऑन द क्लॉक. हैव अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली, ओनली ऑन मैड मॉर्निंग्स बिकॉज मैडनेस तो जरूरी है ना. वॉल्यूम बढ़ाओ. गुड मॉर्निंग.

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station. Ishq ka soundtrack aaj bajega sirf Vibe FM 105.4.

0: Love song of the hour on Vibe FM 105.4.
1: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. Masti, madness और full on desi vibe. सुबह UA वाली madness desi वाली only on Vibe FM 105.4.

ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफर की तलाश है। 8:24 ऑन द क्लॉक फ्रॉम द मूवी धुरंधर आपके लिए, शाश्वत सचदेवा, शहजाद अली, अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग। 8:24 ऑन द क्लॉक वेडनेसडे के दिन, मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ऑन वाई एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई। आज डीप डाइव करते हैं अबाउट दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था। पता नहीं क्या ऐसे ऐसे थॉट आ जाते हैं ना दिमाग में। यूएई में एड्रेस देना जो है ना, इट इज़ एक्चुअली अ स्किल, सही है? बिकॉज एक आर्ट फॉर्म ऐसा जहाँ पे आप जो है ना एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड आप कभी फॉलो नहीं कर पाते हो, नो मैटर वॉट हैपन्स। इट इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग एंड द मोस्ट हिलेरियस थिंग एज वेल। सोचिए यूएई में आप जो है कुछ ऑफिस में, नहीं ऑफिस में नहीं, आप कुछ मंगा रहे हैं या ऑफिस में या तो घर पे, आप जो है एड्रेस देते वक्त जो है ना एक दुविधा में पड़ जाते हो कि यार एड्रेस कहाँ का देना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑफिस का अगर है तो इट बिकम्स अ लॉट मोर इजी है, बिकॉज लैंडमार्क्स आप दे सकते हो कि ये वाली दुकान के पीछे, वो पुरानी बिल्डिंग वाली गली में, हाँ ब्लू गेट के पास। गूगल मैप जो है लैंडमार्क्स ही समझ पाता है, दैट बिकम्स अ लॉट मोर इजी। गूगल मैप का लिंक्स जो है ना, ये जो है आपका बहुत अलग आ जाता है। लाइक वेदर यू शेयरिंग गूगल मैप का लिंक्स, यू आर डायरेक्टली टैपिंग द लोकेशन या लाइव लोकेशन या जैसे। एंड सबसे कन्फ्यूज टाइप ऑफ लोकेशन आता है जब आप बोलते हैं P21 स्ट्रीट नंबर ये, मतलब भाई मेरे को जब कोई बोलता है ना एग्जिट नंबर में ये ले रहा हूँ अलखेल से या शेख जायद रोड से, भाई मेरे को समझ में नहीं आता है एग्जिट नंबर क्या होता है भाई मेरे को। मतलब देखो अपने बहुत सिंपल लोग हैं, यूएई में पैदा हुए जो है ना, हम लोगों को मालूम है यार मोहम्मद बिन जायद इधर से आएगा, नेशनल पॉइंट से निकलो, आगे जाके आ जाएगा, रिंग रोड ले लो, इधर से निकल जाओ। एंड अगर आप ग्लोबल विलेज ले तो ग्लोबल विलेज एग्जिट हो गया, उसके पहले तो ग्लोबल विलेज के पहले वाला एग्जिट, ग्लोबल विलेज के बाद ग्लोबल विलेज बाद वाला एग्जिट। दैट इज द इजिएस्ट वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस। बट एग्जिट नंबर 24, एग्जिट नंबर 38, एग्जिट नंबर 46, भाई ये किसको समझ में आता है? लेकिन मेरे को जब कोई ऐसा बोलता है ना मैं ये एग्जिट ले रहा हूँ, मतलब मेरे को क्या मालूम है कौन सा एग्जिट है, सीधा ये बताओ टाइम कितना लगेगा, बिकॉज वो टाइम के हिसाब से आप गेज कर सकते हो कि कितने किलोमीटर है, कितनी देर में कोई पहुंचेगा आपके पास। दैट इज हाउ सिंपल लाइफ इज सपोज टू बी। बट एट द एंड ऑफ द डे आज के सब जो है ना सब गुस्से में रहते हैं इतना फोन के अंदर के किसी को मालूम ही नहीं है एग्जिट नंबर क्या है। सामने लिखा हुआ है बड़े से व्हाइट बोर्ड में एग्जिट नंबर ये, एंड सबको वही फॉलो करना है। When you give directions to someone, say in UAE, how do you share the location? आप location live share करते हो या तो आप location जो है अलग तरीके से share करते हो बोल के हाँ ये landmarks है, या आप exit number बताते हो। मेरे को क्या समझ में आएगा आपको, अगर मालूम है इसका जवाब तो फिर बताइए 0508791054। फिलहाल नया गाना करण ओजला टॉप फेला आपके लिए, Only on Mad Morning, सुबह UAE वाली madness, देसी वाली। सुनिए बताइए कैसा लगा, because Ojla always on top.

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

जिंदा बंदा फ्रॉम द मूवी जवान आपके अनिरुद्ध क्लासिकल। मतलब भाई साहब ये गाना सुन के सुबह सुबह जो एनर्जी हाई होगी ना भाई, और क्या ही होगा। वेडनेसडे के दिन इट इज एन अमेजिंग टाइम टू बी इन यूएई। मतलब बाहर का टेम्परेचर भी देखा जाए ना भाई, इट इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली इन आवर फेवर। हाँ, गर्म वाला हम लोग तो गर्मी पसंद है ना भाई, क्या करेंगे उसके बारे में। बट हाँ, वेडनेसडे को जो है सेलिब्रेट करना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज यू नो यू आर अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड यू आर क्लोजर टू द क्लोज ऑफ द वीक। तो बीच में जब आ जाते हैं ना तो एक बनाना स्प्लिट भेज देता है। स्प्लिट पे जब होते हैं आप तो हमेशा आपको रेट्रो वेडनेसडे याद आता है। आज रेट्रो वेडनेसडे में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्पेशल सॉन्ग्स व्हिच एक्चुअली आर वेरी रिलेटेबल टू अस। हम लोग जो है एक टाइम पे ना, जब वी यूज्ड टू गो बैक होम और यूज्ड टू कम बैक टू यूएई फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरीवन हैड दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग जो उनके दिल में दिमाग में छपा रहता था, एंड दिस सॉन्ग वुड बी बेसिकली योर गो टू सॉन्ग नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट। आप प्लेन में हो या आप क्या बोलते हैं ईयरफोन्स लगा हुआ है आपने, या आप एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे भी हो, आपके दिमाग में ये गाना हमेशा रहता ही रहता है। एंड एवरीवन हैज दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग दैट दे कैन रिलेट टू, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, नए गाने जितने भी आ जाए भाई, मतलब जैसे बोलूँगा ना, शाश्वत सचदेवा डूइंग हिज मैजिक, अरिजीत सिंह डूइंग हिज मैजिक, इन लोग के पहले वाले टाइम पे व्हेन वी हैड लेजेंड्स लाइक सोनू निगम, शंकर एहसान रॉय, किशोर कुमार, देवर शान, देवर सो मेनी अदर सिंगर्स, अभिजीत भट्टाचार्य, ये टाइम पे जो है ना, इट वॉज एवरी वन हैड दैट वन नॉस्टैल्जिक सॉन्ग जो हमेशा आप उसको है ना कंटिन्यूसली लूप में सुन सकते हो। ऐसा कोई गाना जो आपको जो है ना, या तो आपको एनर्जी दे, या तो एक्साइटमेंट दे, या तो डर दे, या तो होप दे, या सब कुछ एक साथ दे, ऐसा कोई गाना अगर आपके पास है मुझे बताइए 0508791054। देखते हैं कि किसकी स्पेसिफिक मेमोरी कम्स ऑन विच सॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट How you enjoy that song and cherish that song for the rest of your life. Like ek gana, agar main kabhi socha na ki mashup mashuka karunga main, to one song would be definitely on my playlist. इसको सुन के ही भाई अलग ही वाइब आता है। तो ये पुराना वाला नहीं, नया वाला, पुराना और बहुत लंबा है भाई। अनुराधा पुडवाल, उदित नारायण, क्वीन हर्बी, हम प्यार करने वाले आपके लिए फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज। सुनते रहिए मैड मॉर्निंग्स विद शर जील ऑन वाईएफएम 105.4। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली। हैव अ वेरी वेरी गुड ड्राइव।

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शारजील।

0: ज्योति नूरान जैस्मिन सैनल सासवर सचदेव आपके लिए बारी जवान 9:10 घड़ी पे मैं हूं शर्जील वेडनेसडे का दिन। भाई ये पूरा एल्बम जो है ना अलग ही फायर मचा रहा है हर जगह, नो मैटर व्हाट यू विल गेट हुक्ड ऑन टू दीज सॉन्ग्स एंड यू विल लव देम। वेल जैसे वेडनेसडे के लिए सब हुक हो जाते हैं एंड एवरीवन इज लाइक थिंकिंग कि और क्या हो सकता है वेडनेसडे में। वेल आज जो है हम लोग बात करेंगे यूएई में सबसे पहले सबसे बुरा मोमेंट क्या था, मतलब वो चीज़ जो आपको ना आप कभी घर पे नहीं बता सकते। देखो ये बहुत पर्सनल ऑनेस्ट है बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है सबके साथ बिकॉज इट इज टाइम फॉर सीधी बात।
1: ये रेडियो पर डिबेट नहीं है, ये है शर्जील का फैसला, सीधी बात नो बकवास।
0: वेल आज जो है सिंस इट इज अ वेडनेसडे हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर यादें जो हम लोग जो है ना मतलब किसी को बता नहीं सकते हैं। यूएई में पहला साल सही है द फर्स्ट ईयर ऑफ यूएई एवरीवन हैज दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट दैट दे कैन नेवर फॉरगेट। सो इट माइट बी द वर्स्ट मोमेंट एवर, इट माइट बी समथिंग दैट यू हैव नेवर टोल्ड एनीवन एट होम क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके लिए वरी करे। सो ये मतलब मैं अगर खुद बोलूँ ना आई नो someone who basically came to UAE, they were doing their own thing over here, अपना काम वाम कर रहे थे एंड उनको जो है ना वो हर चीज़ की महंगाई एंड प्राइसिंग जो है ना मालूम नहीं था। आई नो समवन हु इज एक्चुअली पेड 750 dirhams फॉर अ सिलेंडर, ऐसे भी है लोग। एंड आई ऑल्सो नो समवन जिसने वो जो पानी की बॉटल नहीं आती जो हम लोग उठाते 10-12-15 दिरहम के अंदर, सही उसके भी 30-30 दिरहम दिए हुए हैं। वेल दिस इज समथिंग विच पीपल हैव दैट इश्यू बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर। बट हाँ एक मैसेज जो मुझे आया था पर्टिकुलरली अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एरर सही है बाय द एचआर एंड वहाँ पे जो है ना मंथ के एंड में अकाउंट में जीरो सैलरी आई थी एंड उस वक्त जब घर से फ़ोन आया था पूछा गया था कि क्या हो गया सब ठीक है, हाँ सब ठीक है कोई टेंशन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर की वजह से सही है 500 दिरहम उधार लेने पड़े थे एंड फिर अरेंज करके सब ठीक हो गया। बिकॉज देखो जब आप आते हो ना नए नए जॉब में देर आर लॉट ऑफ एरर्स, देर आर लॉट ऑफ गूफ अप्स विच कैन हैपन एंड ऐसे ऐसे टाइम पे ना आपको समझ में नहीं आता क्या करोगे बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस जो बेसिकली ऐसे आ रहे हैं एंड दैट इज वेयर यू सी पीपल हैव दैट वो ना दोस्ती का बैरियर हमेशा चाहिए होता है। तो ये तो सीधी बात ही है, अपने दोस्त से आप कभी कुछ छुपाओ मत, घर वालों से भले ही छुपा लो दोस्त को हमेशा बताओ कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस दे आर गोना बी देयर विथ यू एट ऑल टाइम्स। तो आपके पास अगर कोई ऐसा दोस्त है जो बेसिकली हैज बीन देयर विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, हु हैज बीन देयर सीइंग यू एट योर बेस्ट एंड योर लोज, सो ये ऐसे दोस्त के बारे में हाईलाइट करिए। मेरे पास ऐसे दो दोस्त हैं मैं आज भी उनके बारे में बोलता हूँ एंड बहुत बहुत एविडेंटली सोशल मीडिया पर दिखता है, एक जो है बहुत ज़्यादा दिखता है एक जो है बिल्कुल नहीं दिखता है एंड दीज टू पीपल हैव बीन देयर विथ मी सिंस एक जो है हैज बीन देयर विद मी सिंस आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज अ किड ओवर हियर इन यूएई एंड द अदर वन हैव मेट हिम थ्रू कॉमन फ्रेंड एंड दैट इज वेयर यू सी वो दोस्ती जो है ना वो इतनी एकदम मजबूत हो जाती है कि यू डू नॉट नो नो मैटर व्हाट हैपेंस राइट, वो स्ट्रेंथ जो रहती है ना हमेशा वो साथ में आ जाती है एंड वो एक दोस्त है ना वो आपको थप्पड़ मार के भी पूछ सकता है पागल हो गया क्या क्या कर रहे अपनी लाइफ के साथ। वेल ऐसे दोस्त अगर आपके पास है, हाँ मेरे दोस्त शेरियार एंड मीर ये दोनों हैं वो है विथ मी नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो आपके पास ऐसे कोई दोस्त है तो उनके बारे में बताइए ऑन 0508791054।
2: मूड बोले रेडियो बोले वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।
0: वेल दोस्त आए ने आए बट रानी जो है हाँ वो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई साहब, नेवर हाँ नागपाल लो बट नागपाल नहीं बन जा तू मेरी रानी। गुरु रंधावा की आवाज से 9:14 on the clock वेडनेसडे के दिन गुड मॉर्निंग।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: Hayırlısı Naci Akile from the week ENK Meat Bros Yo Yo Honey Saint Jazz Dummy 9:34 on the clock main Usher Jil aap sun rahe hain Mad Morning Zone on YFM 105.4 number 1 desi music station in UAE bhai agar energy nahi hai itna hai na subah ko to phir kya hi kar rahe ho life mein ha aapko jo hai desi world rap ka ek dose dena zaruri hai
1: gate khula hai headlines ka chalo boarding kare welcome to desi world rap
0: वेल इंडिया में जो है अगर देखा जाए ना द देसीएस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज वहाँ पे जो है फेज टू वोटिंग जो है कल थी एंड अभी जो है टीएमसी वर्सेस ऑपोजिशन जो है ना ये भाई अलग ही मजा इसमें मजा आ रहा है मुझे देख के बिकॉज डेमोक्रेसी के प्रोसेस जो है चल रहा है लोग जो है वोट दे रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एंड में रिजल्ट भी आ रहा है एंड प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड रहा एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज देयर अबाउट इलेक्शंस विच हैपेंस लाइक इतना फेयर रहे इतना सीधा रहे ना आराम से लाइफ जो है इसमें कट जाती है आइटम नंबर 2 जानवी कपूर हाँ उनका जो एक वायरल इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बात किया था अबाउट ये सर्कुलेशन जो ऑनलाइन होता है ना जो कंप्लीटली अनवेरिफाइड रहता है मतलब सोचिए शी वाज प्रमोटिंग एन अ मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म कॉल अमहा सही ये पब्लिसिटी जो है ना इट वाज नॉट फॉर बेसिकली जस्ट अ पेड एंडोर्समेंट व्हिच हैपेंड बट हाँ उन्होंने जो है एक्चुअली बताया फैक्चुअली कि हाउ इनकरेक्ट एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैन एक्चुअली कॉज

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

0: Jogasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus a 100% buyback option. Visit Jogasta office today or call 800 Jogasta now. Jogasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

0: बीट देसी हो अंग्रेजी हो मजा तो जरूर आता है। 9:54 ऑन द क्लॉक, मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनियन बाय एफएम 105.4। यो यो हनी सिंह, गिपी ग्रेवाल, पूरी सुबह जो है ना रेट्रे गाने हो गए, संजू सैमसन हो गया, गोल्ड लाइन हो गया, मोहम्मद बिन जायद के पार्किंग हो गया, बट हर चीज के बाद आता है द गुड मैड। भाई देखो, मैं तो इंतजार कर रहा था गुड मैड की आज की स्टोरी का, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ किड्स इन यूएई कैन हैव दैट नॉस्टैल्जिक ट्रिप अबाउट। तो गुड मैड पे आज का स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट।
1: हैप्पी एंडिंग का असली सीन सुबह सुबह, ये है गुड मैड शर्जील स्टाइल।
0: आज की कहानी जो है आई है फ्रॉम अजमान से, एंड यहाँ से जो है एक लिसनर जो है हबीबा मुझे बता रही हैं अबाउट दिस स्टोरी अबाउट दिस वन पर्टिकुलर स्कूल बस ड्राइवर से, एंड सुनील भाई उनका नाम है, जो श्रीलंका से हैं, 11 साल से सेम रूट पे काम कर रहे हैं, एंड 11 सालों से वो एक नोटबुक रखते हैं जिसमें उनके सारे स्टूडेंट्स के ना जो बस में आते बच्चे उन सबका बर्थडेज जो है उन्होंने मेंशन किया होता है, एंड ये बर्थडेज पे ना वो उनको 2-3 दिन को छोटा गिफ्ट आता है ना वो जो 1-5 दिन शॉप में मिलता है वो सब लेते हैं, वेदर इट इज पेंसिल्स चॉकलेट इरेजर कुछ भी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रखते हैं। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट हिज हर सन्स बर्थडे, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि मेरे बेटे का जो पहला बर्थडे था यूएई में आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ बीइंग हियर, उन्होंने जो है एक नया फ्रेंड सर्कल जो है उनके पास वो भी नहीं था, एंड स्कूल से जब वो वापस आए तो सुनील भाई ने जो है ना एक छोटा सा टेडी बेयर जो इनको गिफ्ट किया था, वेदर इट इज फॉर 3 दिरहम्स और 300 दिरहम्स और 3000 दिरहम्स, दैट्स नॉट द पॉइंट। आज तक सी आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग He still has that teddy bear. ये जो teddy bear जो है ना, it has actually become a part of him. And सुनील भाई, एक notebook, 11 साल, हर birthday, 2-3 दिन का, सारे बच्चों के लिए रखना, is like the most amazing thing you can do. And ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, this is what matters the most in life. अगर आप अजमान बस में चल रहे हैं, सुनील भाई, this one message is for you in particular. आज YFM के पूरी टीम ने, everyone would love to give you that love and that respect and that thanks. वो शुक्रिया जो है ना, दैट इज द वन विच मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गुड मैड पे मैड होना गलत नहीं है, बट इरादा अगर अच्छा हो तो फिर लाइफ जो है आगे चलती रहेगी। सो इफ यू हैव दिस वन पर्टिकुलर स्टोरी दैट यू वुड वॉन्ट ऑन एयर, 0508791054 पे वॉइस नोट करिए या मैसेज करिए, एंड लेट मी नो, आई विल हैव दिस स्टोरी ऑन एयर टुमारो, बिकॉज गुड मैड में यही एक चीज़ है ना, मैडनेस जरूरी है बट गुड वाला मैड इज ऑलवेज बेटर।
2: यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना, YFM 105.4, the UAE's number one desi music station.
0: For Sunil bhai out there, Ankit Tiwari ki awaaz mein galiyan from the movie Ek Villain. Because har ek gali 11 saal se yaad rakhna har ek bacche ki, and that one particular liking, ye gaane se acha koi nahi ho sakta hai. 9:57 on the clock, main hoon Sharjeel, sunte rahiye Mad Mornings only on YFM 105.4. Subah UAE wali madness, desi wali, and always remember, be the good mad.

0: currency check made easy. Only on YBFM 105.4.
1: Indian rupee 25.85, Pakistani rupee 75.89, Bangladeshi taka 33.35, Sri Lankan rupee 87.09, Nepalese rupee 41.40.
2: ये था आज का एक्सचेंज अपडेट ओनली ऑन YBFM 105.4।
3: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन YBFM 105.4।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक YBFM 105.4।

मैंने तो इसको देखा फ्रॉम द मूवी गोलमाल अगेन, एक बार देख लो, दो बार देख लो, बट नीरज श्रीधर की आवाज में भाई इसको तो बार बार सुनना ही पड़ता है। शुक्र मैड मॉर्निंग्स वेडनेसडे के दिन द 6th ऑफ मई

कॉल कल हो ना हो। भाई ये मूवी जो है ना, इट वॉज बेसिकली द मोस्ट देसीज देसी मूवी विच एनी वन कुड हैव सीन, बिकॉज इट हैड अ प्रिटी वुमन, इट हैड अ लव बॉय, इट हैड शाहरुख खान, इट हैड सोनाली बेंद्रे, इट हैड एवरी वन, एंड दिस मूवी वॉज अ कम्प्लीट एंटरटेनर। मतलब आज भी अगर देखा जाए ना, इसके गाने भी हो, जैसे इज द टाइम टू डिस्को हो गया, प्रिटी वुमन हो गया, बहुत सारे गाने हैं इसके, माही वे, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स माही वे, ये सब मिला के कल होना हो बिकेम सो एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज एवरी वन वॉन्टेड नैना एंड शाहरुख खान टू कम टुगेदर। नैना, शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम क्या था याद मुझे नहीं है, बट इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज मूवी याद है ना, मूवी में क्या हुआ था वो मालूम है, दैट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग साथ में नहीं हुए, सैफ अली खान गॉट हिस्ट विद प्रीति जिंटा एंड दैट इज व्हाट द मूवी वाज ऑल अबाउट। अगर कल होना हो का सीक्वल बने विद अ न्यू स्टार कास्ट, कौन रहेगा उसमें, डू लेट मी नो 0508791054 कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। एंड अगर हम लोग बात करें अबाउट द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड ना, देयर इज सो मच एंटरटेनमेंट अराउंड इट, एंड आजकल जो है ना, आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग, सही है, देयर आर दीस कपल ऑफ आर्टिस्ट हु आर देयर, लाइक वन ऑफ दीज आर्टिस्ट कॉल्ड परेश पहुजा हु इज देयर, उन्होंने गाना किया था दूरों दूरों। ये गाना जब इनिशियली आया था, मैंने बोला यार क्या ये गाना, मतलब एक और रोने धोने वाला गाना था, लाइक अनूप जैन इज वन आर्टिस्ट विच इज देयर इज वेल, अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स, एंड ये जो इंडियंस क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रैक आर्टिस्ट जो है ना भाई, दे आर डूइंग सो मच बेटर, लाइक बॉलीवुड कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा के गाने जो है एंड इन लोग के इंडिविजुअल गाने आर कम्प्लीटली वर्ल्ड अपार्ट, एंड अरिजीत सिंह स्टॉप डूइंग हिज प्लेबैक सिंगिंग एंड वो जो है इंडिविजुअल गाने बना रहे हैं, एंड दैट इज द कम्प्लीट कम्प्लीट वाइब। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिंगर है हु इज कम ऑफ इन अ बैंड, सही, एट वन पॉइंट बैंड्स वर अ बिग थिंग, हाँ, जैसे अग्नि द बैंड हो गया, देर वॉज जल, देर वॉज बून, देर वॉज सो मेनी ऑफ देम विच वॉज देयर, एंड ये बैंड जो है हम लोग को इतने हिट्स दिए, इतने क्लासिक्स दिए हैं, वी एक्चुअली फेल इन लव विद देम। तो अगर आपके पास कोई ऐसा गाना है विच यू थिंक के yeah, that was something which you would want to hear again and again, do let me know 0508791054. But ek gana jo mera favorite hai, which is Guru Randha ki aaz mein, from the movie Jug Jug Jiyo. देखो गाने आए ना आए, बट इमोशंस जो है आ ही जाते हैं। तो कल होना हो आज देखिए, 2003 के बाद देखने में एक अलग ही मजा होगा उसका। 10:34 ऑन द क्लॉक, मैं हूँ शर्जील, गुड मॉर्निंग UAE, सुबह UAE वाली मैंडस देसी वाली, ऑन योर नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE। हाँ, गुड मॉर्निंग फिर से।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

this message, eh?

0: शुक्रिया मैड मॉर्निंग्स ऑन वाई एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूए। सोशल मीडिया यार ऐसा एक दुनिया है जहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ बज हो रहा होता है। सोशल मीडिया पे अगर बात करें ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर थ्रोबैक्स एंड इसके बारे में बात करना जरूरी होता है।
1: व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, इंस्टा पे स्टोरी और रेडियो पे फुल फिल्मी अपडेट,
2: ये है सोशल मीडिया बज।
0: वेल द रियल गेम चेंजेस व्हेन यू सी थ्रोबैक इमेजेस। सही है, ये 2005, 2006, 2012, इवन 2020 की फोटोज अगर आप देख लो ना, ये एक अलग ही आपको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके जाता है। एंड सोशल मीडिया पे एवरी डे यू विल सी व्हाट वाज ट्रेंडिंग 10 इयर्स बैक, व्हाट वाज ट्रेंडिंग 20 इयर्स बैक, व्हाट वाज ट्रेंडिंग 30 इयर्स बैक। एंड उसके बाद फिर आता है आई डोंट नो क्या और क्या आता है, बट हाँ, दिस इज व्हाट एक्चुअली कीप्स ट्रेंडिंग। तो आपके पास अगर कोई ऐसा सोशल मीडिया ट्रेंड है व्हिच यू एब्सोल्युटली लव द मोस्ट, डू लेट मी नो 0508791054। बट फिलहाल द ओनली थिंग दैट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया इज The Kapil Sharma Show with Sunil Pal and Samay Raina and Ranveer. भाई ये अगर आपने देख लिया ना, यू नो वॉट यू वॉच्ड। तो अगर आपने नहीं देखा है, यू शुड वॉच इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज यू वुडंट वॉन्ट टू मिस इट फॉर द वर्ल्ड। मेरे महबूब, मेरे सनम, बैड न्यूज से गुड मॉर्निंग।

0: weathering your day with the latest forecast. Only on Vibe FM 105.4.
1: Current temperature right now 38 degrees, highs of 40, lows of 29, feels of 38. मतलब भाई साहब गर्मी तो बहुत ज्यादा है. Humidity is 24% and wind speed, कहाँ है wind? हाँ, 15 किलोमीटर पर आ सही है ना. तो क्या करेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए ना.
2: Weather updates done. Stay tuned to YFM 105.4.

वक्त हुआ मेरा समाप्त, मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो से, मिलूंगा वापस आपको कल 6 से 11 ऑन द थर्सडे एडिशन ऑफ मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील. फॉलो अस ऑन सोशल्स ऑन YFM 1054, फॉलो मी ऑन Instagram शर्जील. मिलते हैं कल, तब तक के लिए थोड़ी देर में शुरू होगा देसी एक्सप्रेस. सी यू टुमारो. छोड़ जाता हूँ विद एन अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी गहराइयां डूबे. Sunte rahiye, enjoy kiye apna drive and make sure you do whatever you want to and have a very, very good day. See you tomorrow. Good morning.

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजाओ वाइट बे पे मनो 54
1: यात्री कृपया ध्यान दें, TC एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 105.4 पे आ रहा है।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
1: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

0: अपनी बातें अपने गाने अपने लोग
1: Vibe FM 105.4 The UAE's number one Desi music station.

0: जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: YFM 105.4।

देसी बीट्स यूएई स्ट्रीट्स तैयब के साथ ओनली ऑन देसी एक्सप्रेस। देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.9।

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
1: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजाओ फाइव एफएम 105.4
1: Attention please, next stop,
2: Days Express with Teddy Up.

0: शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: कंधों को किताबों
1: मूड बोले
2: झुमका गिरा रे
1: रेडियो बोले
3: झुमका
1: YFM 105.4 UAE का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन
4: ये
5: स्लो

0: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
1: DJ वाले बाबू मेरा गाना चला तो, DJ वाले बाबू मेरा गाना चला तो, DJ वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो।

चला तो गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बज

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब FM 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। Vibe FM 105.4, number one desi music station in UAE.

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब एफएम 105.4।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजाओ वाइट बे पे मनो 54
1: Attention please! Next stop! Day 6 Express with Tuggy Up.

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग. Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: Desi Express with Tayyab, Desi Beats, UAE Street, 11 a.m. to 3 p.m. Only on Vibe FM 105.4.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

बोले झुमका किरारे रेडियो बोले झुमका वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'स नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।
1: ओह जी।

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइट बे पे मनो 54
1: Attention please! Next stop! Day 6 Express with Teddy Up.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। Vibe FM 105.4, number one desi music station in UAE.

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 एएम टू 3 पीएम,
1: ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
2: चले जब तू लटक मटक, लौंडो के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माजी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किक इट किक इट, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: चुप बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: वाइब FM 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: Your City, Your Vibe, and Sophie spinning the soundtrack.
1: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
2: Clock in with the right vibe. Only on Vibe FM 105.4.
0: टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून्ड टू वाइब एफएम 105.4।

वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

Alright everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to yet again another edition of Sounds Good with Sophie right here on YBFM 105.4 Joker UAE number one Desi music station. So here's the deal, okay? Just sit back, relax, take it easy, and let us entertain you. It is Wednesday, the 6th of May, 2026, and I'll be with you all the way till 7 PM. Today, we have a बड़ा इंगेजिंग टॉपिक की डिस्कशन है एज यूजुअल आई वुड से एंड इट्स ऑल्सो वेरी रेलिवेंट बिकॉज इज समथिंग दैट यू नो वी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिंग इज समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट सो व्हाई नॉट इफ इट्स ट्रेंडिंग वी डेफिनेटली हैव टू टॉक अबाउट इट सो 050-879-1054 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ और शहर के नाम के साथ कमिंग अप नेक्स्ट आई हैव गॉट द वेदर फोरकास्ट I've got the traffic updates, I've got the currency exchange rates, I've got the gold rates. आपके शहर में आपके मुल्क में क्या हो रहा है UAE में हम आपको बताएंगे उसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे अगर मैसेज फ्रॉम करण And he's like, good afternoon, RJ Sophie, where are you? Good afternoon to you, Karan. So interestingly, the person who's supposed to pick me up was already sitting in the car for like 20 minutes on a call, okay? So yes, I was just waiting and hence I got late. But in my defense, I got ready on time, all right? Anyhow, so kickstarting of the show with a track. दैट जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तो काफ़ी हिट था मगर इस गाने की बेहतरीन बात यह है कि आई थिंक मोस्ट प्रॉबली जिस आर्टिस्ट ने भी इस गाने को कवर किया है आई थिंक वो हमेशा से ही एक सक्सेसफुल सिंगल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन सो पंप अप द वॉल्यूम एंजॉय द म्यूजिक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून लेट्स डू दिस

0: इवनिंग का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: वेलकम टू ओशन टावर, वेयर लग्जरी मीट्स लाइफस्टाइल। डाइव इनटू दुबई'स फर्स्ट एवर लेजी रिवर राइड इनसाइड योर बिल्डिंग। प्ले अ राउंड ऑफ मिनी गोल्फ, रिलैक्स इन द इंफिनिटी पूल विद पैडल टेनिस, आउटडोर योगा एंड स्काई लाउंजेस ऑफरिंग ब्रेथ टेकिंग व्यूज यू विल नेवर वांट टू लीव। Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in the Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit aaarealestatedevelopment.com or call 0460205355 today.
0: Workday ka the end, party ka asli start. Sophie ke saath. Sounds good with Sophie. Only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: विद सोफी, ओनली ऑन वाइब FM 105.4. ब्रॉट टू यू बाय दुगस्ता प्रॉपर्टीज.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4 योर सिटी योर वाइब एंड सोफी स्पिनिंग द साउंड ट्रैक
1: साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4

0: वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ. Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

0: इवनिंग का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years, with no service charges for 10 years, plus a 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
2: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम, सोफी के साथ हर गाना एक गोल। साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4।

वर्कडे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

All right, everyone, a very good afternoon to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. Time ho chuka hai 4:50, and she'll be with you all the way till 7 p.m. So how's the day shaping up so far? Talk to me about your day. And midweek it is. We're kind of stuck in the middle of the week, aren't we? I mean, it's not the start to the week. It's not the start to the weekend ahead. And I know a lot of my friends who love Wednesdays, by the way, aur wo ye kehte hain ki, you know what, Sophie, it's just there, you know, because it's so nonchalant. It doesn't say anything. It's just there. And that is kind of true. मुझे ऐसा लगता है कि वेंसडे पे कोई खास प्रेशर नहीं होता. यूजुअली मंडेज को होता है, ट्यूजडेज को काम कर रहे होते हैं. वेंसडे को कैन चिल आउट अ लिटिल बिट, थर्सडे को कैन रैपिंग अप थिंग्स, एंड फ्राइडे को यू नो इट्स टाइम फॉर द वीकेंड. एनी हाउ, सो मूविंग ऑन, आज हमारे पास जो डिस्कशन चल रही है वो है सीक्वल्स के ऊपर. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज दैट इफ यू वर टू कम अप विद यू नो अ सजेशन फॉर अ सीक्वल दैट एवरीवन वुड वांट टू वॉच ऑफ एनी मूवी, तो वो कौन सी मूवी होगी जो आप चूज करेंगे. रोमान है हमारे यहाँ पे कॉलीग, एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ डिस्कशन विद हिम, एंड आई वाज लाइक, यू नो, व्हाट अबाउट यू, एंड ही वाज लाइक, सोफी, डू यू रिमेंबर हलचल? आई वाज लाइक, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर हलचल. एंड आई वाज लाइक, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हलचल वॉज वन ऑफ दोज very underrated films, aur itni wo funny thi. Akshay Khanna was hilarious, Kareena Kapoor was amazing, everybody in that film was top notch, and it was such a fun film to watch. If you haven't seen Halchal, I would suggest go ahead and watch it for sure. So that's interesting, a sequel to that, he says, would be interesting. All right, and then I've got a message from Govind keh rahe hai, hi Sophie, how are you? I'm doing very well, Govind, how are you? Sharjah mein kidhar phir rahe, ye mujhe bataiye. He says, Sophie, I would like to have a sequel of Hum Aapke Hain Kaun, and then he explains it. Theek hai, he says that you know, do you remember like the first half of that film was so colorful, there was a family culture that was shown, the dressing was amazing, everybody was happy, and then you know the sacrifice that Madhuri and Salman Khan made for the family, this is something that I admire. All right, well, each to his own, as they say, har ek apna viewpoint hai, and ये बात तो है कि वो एरा एक डिफरेंट था और उसमें फैमिली वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देते थे फ्रॉम दैट एरा. सो टोटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. सो 0508791054 इज द व्हाट्सएप नंबर. एनी हाउ, कमिंग अप नेक्स्ट, वी गॉट सम ट्रेंडिंग न्यूज़ एंड हेडलाइंस एज वेल, बट फॉर नाउ, आई मीन, दिस वोकलिस्ट इज अनबिलीवेबली गुड, सुखविंदर सिंह. आई एब्सोल्युटली लव हिज वोकल्स. लेट्स टेक अ लिसन टू दिलहारा.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.

इवनिंग का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4। इश्क का साउंडट्रैक आज बजेगा सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

0: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4
1: गोल रेट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4

वर्कडे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

right, everyone. A very good evening to all of you. Thank you so very much for texting in, for the feedback as well. And how was your day? Was it crazy? Was it hectic? Was it relaxed? How are you guys feeling? Fill me in on the details. Time watch kya chahiye, but ke chaudha minute, and she'll be with you for the next half an hour. And yes, that's right. And the name of the show is called Sounds Good with Sophie and Vibe FM 105.4. So moving on, today's topic of discussion is on sequels. Theek hai? Acha, aaj ka sawal ye hai ki agar aapne koi suggestion deni ho for everyone to watch a sequel of a famous film, so which film would you pick? All right, so a lot of people are talking about दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, एंड कभी खुशी कभी गम, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन, एंड चक दे इंडिया भी किसी ने मेंशन किया था, एंड देन हलचल, ढोल, और बड़े मज़े के लोगों ने नाम लिए थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. एंड देन आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई लिसनर्स हु आई रिमेंबर वाज ट्यूनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे, मरिया. हाई मरिया, इट्स लवली टू हैव यू बैक. हाउ इज़ योर डे टुडे? शी सेज, सोफी, डू यू रिमेंबर मर्दानी, रानी मुखर्जी? शी सेज दैट यू नो द थीम एंड द कॉन्टेंट, इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. आई थिंक उसका सीक्वल होना चाहिए. नंबर वन, आई लव्ड रानीज़ परफॉर्मेंस बाय द वे. नंबर टू, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन अबाउट द कॉन्टेंट, बट मर्दानी ऑलरेडी 3 दफ़ा बन चुकी है. मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी सीक्वल्स आ चुके हैं, सो आई थिंक मे बी यू ट्राइन से इट शुड कंटिन्यू, राइट? सो देर इज डेफिनेटली दैट. एंड रानी इज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज रियली एडमायर्ड. आई मीन इफ यू टॉक अबाउट ऑल द फीमेल एक्टर्स, रानी की आंखें and the way that she dances, and I think she has always been very graceful. So yeah, big shout out to you. Thank you for texting in. Mudassir, I passed on your message to Abdul Rahman. I was like, you know, Mudassir keh raha hai ki jitne aap khane peene ki hame cheeze bhejte rehte hain to aapki biwi to bahut lucky hogi. To hans rahe hain, wo keh rahe ji bilkul, ha ha ha, bahut lucky hai. Mujhe to lagta hai ki ye bhi kafi lucky hai, kyunki mujhe lagta hai ki kafi haath inki biwi ka bhi hai is cheez ke andar, hai ki nahi. Anyhow, moving on, a couple of things that caught my attention. So let's see. All right, so I was reading about something. So if you write a message of hope at Dubai's giant viral chocolate box, you can receive free goodies. So Kite Beach par ek badi mazey ki canvas jo hai aapko dekhne ko milega for messages of hope and kindness and unity, right? So you know, of course, about the viral chocolate brand, right? So they basically are launching a new public art installation, and that's aimed at celebrating the community spirit in the UAE. And ye jo hai 9th or 10th ko hoga, which is this weekend, from 4 p.m. until midnight, aur uska naam inhone diya hua hai messages from the UAE. राइट, तो ये जो एक्टिवेशन है ये बेसिकली इनवाइट करेगा रेजिडेंट्स को टू सबमिट अ लॉट ऑफ हार्टफेल्ट नोट्स थ्रू डिजिटल टैबलेट्स, यू नो, प्लेस्ड इनसाइड दिस इंटरैक्टिव हीरो बॉक्स इंस्टॉलेशन. एंड ये जो मैसेजेस हैं ये रियल टाइम में अपेयर होंगे, एंड दैट्स पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड क्लाउड, राइट? और लेटर जिसमें इंस्पायर करेंगे लिमिटेड एडिशन ऑफ देयर चॉकलेट बॉक्स डिजाइन एज वेल. सो दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एट द काइट बीच ओवर द वीकेंड. मे बी यू गाइस वुड वांट टू चेक इट आउट. ऑलराइट, राहुल का मैसेज आया है, can you please play any song which has been picturized on Shah Rukh Khan? Any song actually happens to be a lucky day. You know why? Because up next, I've got From Kal Ho Na Ho, Pretty Woman. Enjoy it.

0: डीजे का एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ. Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

0: Your City, Your Vibe and Sophie spinning the soundtrack.
1: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: Drive home, switch on, and let Sophie turn up the good vibes.
1: Sounds good.
0: Sounds good with Sophie on Vibe FM
2: 105.4. समय का सही हिसाब वाइब के साथ टाइम चेक ऑन वाइब एफएम 105.4।
3: और दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:01 हो रहे हैं और यहां से हम दोस्त अब मुस्कुराहटों के सफर की तरफ उड़ान भरेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है ना।
2: टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून टू वाइब एफएम 105.4।
4: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन नया शोर।

0: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: दोस्तों, एक सर्वे में मर्दों से पूछा गया कि 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखना चाहिए, तो 97% मर्दों का कहना था कि नहीं, 40 गर्लफ्रेंड काफी होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना?
3: Arshad has entered the building. Keep within reasonable distance from your radio set.
4: Vibe 105.4, number one desi music station. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. Sayyed Arshad having a license to chill है मेरा नाम. Believe me, I am a liar. है ना?

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: और दोस्तों, शो के शुरुआत में ही अब्दुल खालिक साहब, जो कि कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा है। लिखते हैं कि डॉक्टर ने मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा और साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि मैं अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, वापस आ जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं। वेरी गुड।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
2: वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं शो के दूसरे लिंक में आमतौर पर एक काम की बात करने लगा हूं, और ये इसलिए कि शायद मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जैसे ही तबीयत पूरी तरह से ठीक होगी, मैं पुराने ढर्रे पर चलाऊंगा और वही पूरे शो में सिर्फ खुराफाती ख्यालात आप तक पहुंचाऊंगा। आज ये लेकिन इत्तफाक से दोस्तों, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छी बात आई। अभी पिछले दिनों जब मैं इंडिया गया था तो कई पहाड़ी इलाकों में हिल स्टेशंस पर गया और वहां पर मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। कहने लगे कि झरनों में इतना सुंदर गीत सुनाई ही नहीं देता अगर उसकी राहों में पत्थर ना होते। कहने लगे कि जो झरनों की आवाज़ें आती हैं, पानी जो कल कल बहता है, इसकी बड़ी मज़ेदार सुरीली और बहुत ही दिल को तस्कीन बख्शने वाली सुरीली आवाज़ होती है। कहने लगे अगर इसके रास्तों में ये पत्थर ना आए तो ये आवाज़ निकल ही नहीं सकती। तो मेरे जहन में एक शेर आया, मैंने कहीं सुना था कि मुखालिफतों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये जो रुकावटें हैं ना, ये जो दुश्मन हैं, ये जो इस तरह के माहौल हैं, ये इंसान को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, हमें मुकाबला करने में, हमें हालात और दुश्वारियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं और हमारी पहुँच को और मजबूत बनाकर मंजिलों की तरफ हमारे कदमों को बढ़ाते हैं और फिर हम इसी तरह कामयाब होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जो हमारी मुखालफतें करते हैं, वो दरअसल हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं बनते, बल्कि वो हमारे मंजिलों की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने की राह हमवार करते हैं और हमारे विल पावर को और मजबूत करते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात और है, ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्कुराइए और बस। वो इसमें ही परेशान हो जाएंगे कि मैं इसको परेशान कर रहा हूं और ये फिर भी मुस्कुरा रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी हार होगी। चलिए दोस्तों, ये वाकई काम की बात थी। अब आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए। उससे पहले बचपने को याद कीजिए, यादों में खो जाइए, क्योंकि जब आप यादों में खो जाते हैं तो दिल से मुस्कुराते हैं और जिन लम्हों को आप जीकर आ चुके होते हैं एक बार फिर से उन्हीं लम्हों को जीवंत जी पाते हैं। तो मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, अब यहां से आप शुरू कर सकते हैं अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। एंड दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना?
1: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग. Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।
3: तेरे किट धूम, तेरे किट धूम, तेरे किट।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Stories जो आपकी रात को यादगार बनाए. This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: और पंकज कुमार जो कि हरिद्वार इंडिया के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि एक बात मैं आपको बता दूं, गर्व करने लायक बात है कि आप जो मेरी इस वक्त पोस्ट पढ़ रहे हैं वो मैंने खुद चोरी की है. जिंदाबाद.
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
4: फ्रॉम गल्फ टू बॉलीवुड, न्यूज जो आपको कर दे लॉल, ये है जबरदस्त जरूरी न्यूज.
2: और पंकज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की. और ये जो इधर से चोरी करने का मामला है, तमाम सोशल मीडिया पर ये बहुत आम हो चुका है. इधर से उठाई उधर पोस्ट की, उधर से उठाई उधर पोस्ट की, और बहुत सारे लोग तो देखते भी नहीं. एक बार तो ये हुआ था कि शायद ईद का जमाना था, लोग बाग मुबारकबाद दे रहे थे और एक साहब ने स्पीच में लिखा कि मेरी वाइफ सख्त बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके दोस्त ने बिना देखे ही लिख दिया थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू जस्ट द सेम. इस तरह के भी मामला होते हैं, आपने देखा होगा. लेकिन एक सोशल मीडिया का मामला मैं और सोच रहा था कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा, आदमी सिर्फ ऑनलाइन दिखता है, कौन किसके साथ है अगर ये दिखता तो बड़ा मजा आता है ना. रोज झगड़े होते, खूब मार कुटाई होती है ना, हंगामा हो जाता है कि नहीं. चलिए दोस्तों, मेरा काम तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है. जो आप मेरे साथ इस टाइम को बिता रहे हैं, इस लम्हे को यादगार बनाना है, क्योंकि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप थक जाते हैं, और थकने के बाद जब आप लाइटर वेन की बातें इस तरह की सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और थकावट भूल जाते हैं, एकदम तरोताज़ा फील करते हैं. और यही मेरी कोशिश और ख्वाहिश के सबके सब गम ले लूं, हर होंठ पर मुस्कुराहट लिख दूं. तो फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी, लेकर अरशद का नाम. एंड यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी, आई एम अ लायर, है ना.

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4।
1: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन नया शोर।

0: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: और जितेंद्र तायल साहब जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अपने पति को मत कोसा करो, अगर उनमें इतनी काबिलियत होती तो उनको ढंग की पत्नी मिल जाती। क्या बात की है आपने, ये तो आपने दिल जीत लिया तायल साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
1: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
0: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट।
1: और तायल साहब, मुझे याद आया कि एक साहब ने अपनी सास से शिकायत लगाई कि आपकी बेटी में कोई भी गुण नहीं है, कुछ काम नहीं आता, एकदम बेकार है और बस लड़ाई झगड़ा करती रहती है, जिंदगी को उसने नर्क बना दिया है। तो उनकी सास ने उनसे कहा कि बेटा मुझे मालूम है, तभी तो उसे कोई ढंग का लड़का नहीं मिला और मुझे ढंग का दामाद नहीं मिला। उसके बाद बेचारा अपना सा मुंह लेकर चला आया, उसे पता नहीं था कि वो भी एक स्त्री से बात कर रहा है। और आप जानते ही हैं कि मैंने एक दो बार पहले कहा था कि महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों का काम टेढ़े मेढ़े को सीधा करना होता है। समझ गए होंगे आप। चलिए फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। और दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना।

0: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
1: This music station.

0: स्टोरीज जो आपकी रात को यादगार बनाए। दिस इज द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद।
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
0: यही तो गम है।
1: फैसलाबाद के अब्दुल वकास साहब ने लिखकर भेजा है कि एक स्टूडेंट ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखी और उसमें लिखा कि सर बात यह है कि मेरे फादर ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे, 100 की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 की हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली और समोसे खा लिए, 50 रुपए में मोबाइल अपना रिचार्ज करवा लिया और 200 रुपए इंग्लिश वाली मैडम पर शर्त हार गया। मैं समझता था कि उनका सिर्फ मैथ वाले सर के साथ चक्कर है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, मेरी फीस माफ करें या अपना राज फाश करवाएं, शुक्रिया। उसके बाद जो कुछ हुआ होगा आप समझ गए होंगे, है ना।
2: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
1: Vibe FM 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
0: डिसिप्लिन हो या ड्रामा, ट्रेडिशन हो या ट्रेंड, ये है द असली जेनरेशनल क्लैश, बाप वर्सेस बेटा।
1: और अबुल वकास साहब, स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी काम कर देते हैं कि बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं। एक बार तो यहाँ तक हद हो गई कि एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर मेरा इंतकाल हो गया है, मेरी डेथ हो गई है, देहांत हो गया है और आप मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दें। और प्रिंसिपल ने उनको छुट्टी दे भी दी। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आम तौर पर बच्चों की दुआएं कबूल होने लगें तो ये जितने मौलाना हैं जो कुरान पढ़ाते हैं या जितने टीचर हैं जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी और इतने सारे इतनी बड़ी तादाद में मर जाएं कि एक भी टीचर नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टूडेंट होता होगा जिसने अपने टीचर के मरने के लिए दुआएं ना की हों, है ना। और एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मैं आपके दिल में क्या है वो बात समझ जाती हूँ, जब भी आप मुस्कुराते हैं मुझे पता चल जाता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा, मैडम फिर तो आपको बहुत ही शर्मिंदगी होती होगी, आपको बहुत ही अफसोस होता होगा, आपको बहुत ही कोफ्त होता होगा, या यूँ कहूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता होगा। उसके बाद उस स्टूडेंट का क्या हुआ होगा आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। और दोस्तों इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना।

0: मूड बोले
1: झुमका गिरा रे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: फैसलाबाद पाकिस्तान के रहने वाले इरशाद खान साहब ने लिखकर भेजा है कि एक साहब मुझे कह रहे थे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मिलिट्री वालों ने 51 तोपें चलाई थीं, 51 तोपों की सलामी दी थी। मैं वहां सिर्फ इतना कहकर चलाया कि भाई कमाल है, सबका निशाना चूक गया। जिंदाबाद इरशाद साहब।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे सन।
2: वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और इरशाद खान साहब, मैं एक बार और भी लोगों को बता चुका हूं कि रेडियो जॉकी बनने से पहले, रेडियो टेलीविजन इंडस्ट्री में और जर्नलिस्ट बनने से पहले मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और आर्मी में पहले ही दिन ट्रेनिंग के लिए मुझे ले गए और उन्होंने AK-47 थमा दी और कहा निशाना लगाइए। मैंने कहा कि बंदूक की नोक किस तरफ रखूं, तो ऑफिसर ने कहा कि जिस तरफ भी रखें फायदा मुल्क का ही होगा। और मैं समझ गया था कि ये काम मेरे लायक नहीं, और बस अब मैं इधर आ गया और सिर्फ बोलने के पैसे लेता हूं, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, यहां से अब हम मुस्कुराहटों के सफर को विराम देंगे और अब हम मोहब्बतों के सफर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जहां हम मोहब्बत की गुनगुनी आंच को और दहकाते हैं, हुस्न को और हसीन बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुनगुनाते हैं, गुदगुदाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे अपने दिल के बेहद करीब पाते हैं। तो बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने।
4: यही है प्यार वाली मोहब्बत।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

देश केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'स नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। इश्क का साउंडट्रैक आज बजेगा सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

0: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: Vibe FM 105.4, number 1 Desi Music Station. Show ka naam hai The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो का तीसरा घंटा दोस्तों शुरू हो चुका है, जिसमें अब हम बातें मोहब्बतों की करेंगे, जिसमें हम हुस्न को और हसीन बनाएंगे और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करेंगे और उसको ये महसूस कराएंगे कि हम बस उसी को चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं और उसी पर मरना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि तेरा हक है तू मुझे सताया कर, तेरा हक है तू मुझे सताया कर, पता है आज क्या हुआ ये कहकर सब बताया कर। बैक टू बैक तीन गाने, गानों को उस पार मोहब्बतों के फसाने। तो सुनते रहिए वाइब एफएम 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।

0: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सईद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, शो के तीसरे घंटे में अब हम बातें मोहब्बतों की करेंगे। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करेंगे और कहेंगे कि जैसे चांद के साथ चांदनी, सूरज के साथ रोशनी, जैसे जगमगाते सितारे, बस तेरे साथ मुझे यूं ही लगते हैं हर नज़ारे। तेरी पायल जब छनकती है, तेरी आवाज जब खनकती है, तू नूर सी नूरानी है, तू कस्तूरी जाफरानी है, तू फूलों की तरह गुलाब है, तू सुकून देने वाली आग है, तू चहकता ख्वाब है, तू महकता हुआ सुर्ख गुलाब है, यूं समझ के मेरी धड़कनों को बढ़ाने वाला तू साज है, और मेरे दिल के पता तुझे हर राज है। देख, तुझे सोच रहा हूं और महक रहा हूं, वो अल्फाज जो तेरे नाम से जुड़े हैं खुशबुओं से भरे हैं। ना होना मेरी नजरों से अब दूर तू, बस यूं ही बैठी रहो मेरे रूबरू।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Stories जो आपकी रात को यादगार बनाए. This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
2: Vibe FM 105.4, number 1 Desi Music Station. Show का नाम है the famous 7 to 10 with Syed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. Syed Arshad having a license to chill है मेरा नाम. शो के तीसरे घंटे में दोस्तों हम बातें मोहब्बतों की कर रहे हैं. जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस कर कुछ यूं कह रहे हैं कि वो इश्क, वो आशिकी का ज़माना, वो खुशबू भीनी भीनी, वो जीवन शायराना, वो मुझसे नज़रें मिलाना, वो मुस्कुराना, वो बेपरवाह जुल्फ़ों का बिखर जाना, वो नमकीन अदाओं का निखर जाना, वो ख्यालों तक में ख्वाबों को सजाना, वो ज़िंदगी को ज़िंदा बनाना, उसके अंदाज की तपिश में तप जाना, उसकी आवाज की कशिश में खो जाना, एक दूसरे के हो जाना, एक दूसरे में खो जाना, जीवन का वो सफर कितना सुहाना, वो इश्क, वो आशिकी का जमाना, वो खुशबू भीनी भीनी, वो जीवन शायराना. आप भी मेरे साथ खो गए ना, है ना.

0: मूड बोले
1: झुमका गिरा रे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: YFM 105.4 UAE का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: शाम की गुफ्तगू, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सईद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो के तीसरे घंटे के पहले लिंक में दोस्तों मैंने जो पंक्तियां पढ़ी थी वो कुछ यूं थी कि तेरा हक है तू मुझे सताया कर, तेरा हक है तू मुझे सताया कर, पता है आज क्या हुआ ये कहकर सब बताया कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी शो में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टिकटॉक पेज को फॉलो कर लें, कोई राय और मशवरा देना चाहें तो आप हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी सेम है, vibefm vibefm 1054, या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा से जुड़ सकते हैं या मेरे टिकटॉक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आईडी है sayed.arshad sayyed.arshad007, और तमाम सोशल मीडिया पर दोस्तों मेरी यही आईडी है। तो आज के द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।